हस्त रथ असव पवन तेज तनी पूमन चतरंगा संग ना चालो इन मैं कछु है उड़ सदायो नांगा हर के संत प्रिया प्रीतम प्रभ के ता कह हर हर गाइए नानक इहां सुख आगे मुखी उज्जल संग संतन कह पाइए जैत सरी महला पंजवा कर तीजा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो बिसम भई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखियै सुहागन सात बुझहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने कही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ। दिसै

0: श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मेरे साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्त हर नाम भोजन खाया।
1: You have just heard a recital from the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. We now offer you two Islamic devotional songs, the first of which sings of the last day. Belief in the last day, when all souls will be judged by God, is common to the Jewish faith, Christianity, and Islam.